0: डाक्टरको परामर्श बिना औषधि सेवन नगरौं, आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत रहौं।
1: सामाजिक सचेतनाका लागि क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज।
2: टाइम चेक,
3: इट्स 3 PM।
4: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय हाई फेस, बी प्रिपेयर्ड, सेफ्टी फर्स्ट।

0: धार्मिक स्थल, चौतारा, पानीको स्रोत, पुरातात्विक एवं सामाजिक संरचनाको सधैँ संरक्षण गरौँ।
1: सामाजिक सचेतनाका लागि क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज।
2: टाइम चेक।
3: इट्स 10 पीएम।
4: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय हाई फेस। बी प्रिपेयर्ड, सेफ्टी फर्स्ट।

धरती भरी नौलो रंग नयाँ बिहानी छाई सक्यो, धरती भरी नौलो रंग नयाँ बिहानी छाई सक्यो, प्रभातले मन भरी मुटु भरी नयाँ लाली लाई सक्यो, प्रभातले मन भरी मुटु भरी नयाँ लाली लाई सक्यो।